0: कलयुग में वर्तमान त्रयी अवतार में शिरडी बाबा ने मानव एकता की नींव रखी और कर्म ही कर्तव्य है की शिक्षा दी। वर्तमान में भगवान सत्य साई बाबा का उद्देश्य है सभी को यह विदित करवाना कि सब में एक ही ईश्वर का निवास है। प्रेम साई इस भावना का विस्तार करेंगे कि सभी स्वयं ईश्वर है। इन तीनों साई अवतार का संदेश है कर्म, पूजा और ज्ञान। भगवान बाबा के चरणों में कोटिशह वंदन करते हुए उनके समक्ष उनकी ही प्रेरणा से साई अवतार के आगमन के रहस्य को प्रकट करती है यह पावन कथा साई अवतरण रहस्य।
1: गुरुदेव, गुरुदेव, वेयर आर यू?
2: व्हाट हैपेंड माय डियर? व्हाई यू आर लुकिंग सो वरीड?
3: प्रणाम गुरुदेव।
2: गुरुदेव, आई हैव लॉस्ट माय पीस।
4: बी काम माय चाइल्ड, टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर रेस्टलेसनेस।
2: गुरुदेव, यू हैव मास्टर्ड अस इन सेवरल फील्ड्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ साइंस, ऑफ म्यूजिक, ऑफ लिटरेचर, ऑफ मैथमेटिक्स, ऑफ वेदास, बट स्टिल आई हैव नो इनर पीस। आई एम नॉट सैटिस्फाइड। व्हाई?
4: ओह साईराम, माय डियर, यू आर टॉकिंग जस्ट लाइक ऋषि भारद्वाज।
2: ऋषि भारद्वाज?
4: आई हैव टोल्ड यू अबाउट भगवान श्री सत्य साई बाबा एंड ऋषि भारद्वाज, डोंट यू रिमेम्बर?
2: यस, आई रिमेम्बर, बट गुरुजी, काइंडली टेल मी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भगवान श्री सत्य साई बाबा एंड ऋषि भारद्वाज?
4: व्हेन द धर्म ऑफ द एज इज लेड असाइड टू एस्टैब्लिश अ न्यू थ्रू लविंग मींस, व्हेन द वर्ल्ड इज पॉल्यूटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन टू रिस्टोर द पाथ of virtue and peace, when good men are caught in cruel coil's veil to save them from pain and shame, when sacred texts are not grasped aright to proclaim the message they teach mankind, to relieve the earth of the burden of vice, to fulfill the promise made in Treta Age, Achyuta has incarnated on this earth. Vasudeva, Sri Hari, has come into this world.
2: Guruji, how can I see him?
4: Come little closer. Close your eyes and feel the presence of Satya Sai Baba inside your soul. You will listen the sound and feel the vibration of Almighty.
2: I am the one who has put on all forms. I am peace. I am the one who bears all names. I am auspiciousness. I am being, awareness, bliss, one without a second. I am truth, goodness and beauty. Nothing can hold me up or agitate me come in this human form. Be certain of that. My sankalp must prevail. My task must be accomplished. My mission will succeed.
4: Open your eyes.
2: Guruji, I can't explain what I felt. Guruji, kindly tell me more about Satya Sai Baba.
5: हाँ गुरुदेव, आपकी बातें सुनकर हमारी भी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल हो रही है। कृपया हमें भी भगवान साईं बाबा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें और ऋषि भारद्वाज के बारे में भी हमें बताएं कि उनका भगवान श्री सत्य साईं बाबा से क्या संबंध है।
4: अवश्य प्रिय, भगवान श्री सत्य साईं बाबा का आगमन भक्तों की पुकार के फलस्वरूप है। ईश्वर ने अवतरित होने का संकल्प लिया, इसलिए वह वर्ष, वह दिन और वह क्षण सब पुण्य थे। वर्ष था अक्षय कार्तिक का पावन माह और सोमवार का दिन आद्रा नक्षत्र उदय था। 23 नवंबर 1926 को मंदिरों में घंटे बज उठे, शंखनाद हो उठा और भगवान साई बाबा आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पुट्टपर्ती में मां ईश्वरम्मा की गोद में आविराजे।
5: फिर क्या हुआ? मुझे बहुत ही कौतूहल हो रहा है।
4: 20 अक्टूबर सन 1940 को सत्य ने अपनी पुस्तकें एक तरफ फेंक कर गृह का त्याग कर दिया। 25 मई 1947 को अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर अपने उद्देश्य की घोषणा की। भगवान सत्य साई बाबा ने कहा कि मैं यहाँ एक कार्य करने आया हूँ, वह कार्य है समस्त मानव जाति का पालन पोषण।
5: गुरुजी, बाबा ईश्वर का अवतार है तो क्या वे सभी से मिलते हैं?
4: अवतार तो समस्त मानव जाति की संपत्ति है, उनका प्रेम समस्त विश्व में सभी को सभी स्थानों पर समान रूप से उपलब्ध है। स्वामी की घोषणा है, मैं मानवता के इतिहास में स्वर्ण अध्याय लिखने आया हूँ, जिसमें असत्य की हार और सत्य की विजय होगी, सद्गुणों का साम्राज्य होगा। स्वयं को मुझ में देखो, क्योंकि मैं स्वयं को तुम में देखता हूँ। तुम सब मेरे ही स्वरूप हो। जब मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैंने स्वयं को स्वयं से पृथक किया है ताकि मैं स्वयं से प्रेम कर सकूं।
5: गुरुजी, ऋषि भारद्वाज का बाबा से क्या संबंध है?
4: तुम बड़े जिज्ञासु हो शिष्य, सुनो। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 6 जुलाई 1963 को भगवान श्री सत्य साई बाबा ने अपने अवतरण का रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि मैं अब तक एक रहस्य छुपाए हुए था, आज मैं इस रहस्य को प्रकट करता हूँ कि मैं शिव शक्ति अवतार हूँ। पिछले 8 दिनों से तुम सब ने मेरे शरीर को जो पीड़ाग्रस्त देखा, वह त्रेता युग में ऋषि भारद्वाज को दिए गए वरदान की एक कड़ी थी, जिसमें शक्ति को जो मेरे बाएं अंग के रूप में विराजमान है उनको कष्ट भुगतना पड़ा, और 8 दिन उस कष्ट को सहने के बाद मैंने जल छिड़क कर अपने बाएं अंग को स्वस्थ कर दिया।
5: अद्भुत। गुरुजी, ऋषि भरद्वाज का आश्रम कहाँ है?
4: गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयाग नगरी युगो युगों से योगियों, मुनियों और महर्षियों की तपस्थली व कर्मस्थली रही है। उनके त्याग, तपस्या व मानव हितकारी कार्यों के द्वारा मानव का सदा कल्याण होता रहा है। उस पावन धरती की रज को मस्तक से लगाएं, जहां ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, प्रभु श्री राम के चरण पड़े। आइए हम सब भगवान श्री सत्य साई बाबा के अवतरण के साक्षी बने भारद्वाज मुनि की इस कथा के दृष्टा बने, जिसकी वजह से भगवान शंकर ने इस धरती पर अवतरित होने का संकल्प लिया। तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग की जय हो, गंगा मैया की जय हो।
6: बोलिए तीर्थराज प्रयागराज की जय।

महर्षि भारद्वाज को बड़ी अभिलाषा थी कि वे अपने इसी जीवन काल में चारों वेद के संपूर्ण ज्ञान से पारंगत हो जाएं। अनवरत अध्ययन करने के पश्चात भी वे समस्त वेदों के बारे में जानकार नहीं हो पाए। तब उन्होंने इंद्रदेव की स्तुति की और उनके प्रकट होने पर 100 वर्ष की अतिरिक्त आयु की मांग की। उसके बाद भी इंद्रदेव से और 200 वर्ष की उम्र की मांग की। जब वे 300 वर्ष के अनवरत प्रयास के बावजूद भी चारों वेद का संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाए तो उन्होंने इंद्रदेव से फिर स्तुति की।

0: हे ऋषिवर, मुझे पुनः क्यों स्मरण किया?
1: हे देवराज इंद्र, मुझे धिक्कार है। मैंने नाना प्रकार के दर्शन शास्त्रों, ग्रंथों और वैदिक श्रुतियों का अध्ययन किया है, परंतु मैं अत्यंत व्यथित हूं कि इतना समय दिए जाने के पश्चात भी मैं इन चरणों के नाखून के समकक्ष ज्ञान को भी नहीं जान पाया हूं। देव, ये मेरा अभिमान ही है जो मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है। अपनी इस अयोग्यता के लिए मुझे लज्जा आती है। देवराज, अब आप ही कृपा करें तो मेरे चित्त की अशांति नष्ट होगी। 300 वर्षों का समय दिए जाने के बाद भी, अनवरत अध्ययनरत होते हुए भी, मैं समस्त वेदों के बारे में न जान पाया। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें।
0: ऋषिवर, निराश न हो, वेद तो अनंत है। ये जो आप पर्वत की श्रृंखलाएं देख रहे हैं, वेद इन्हीं पर्वतों के समान है। 300 वर्ष में तो आप सिर्फ 3 मुट्ठी पत्थर ही चुन पाए हैं। अगर आप इसके फल की आकांक्षा रखते हैं तो एक यज्ञ का आयोजन करें, और इस यज्ञ में अगर पहली आहुति स्वयं भगवान शंकर और पार्वती आकर दे दें तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।
1: क्या भगवान शिव और पार्वती मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे?
0: ऋषिवर, ये तो आप भी जानते हैं कि भगवत इच्छा के प्रति यदि हम संपूर्ण समर्पण कर दें तो भगवान ही सबका मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। वे इतने करुणापूर्ण हैं कि वे तो सत्यनिष्ठ साधक को कभी निराश नहीं करते। सतत सुदृढ़ और विश्वासपूर्ण प्रयत्नों से वे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।
1: आपकी बातों से मेरे हृदय को अत्यंत शांति प्राप्त हुई है। आप सत्य कह रहे हैं। भगवान तो भक्त का हृदय देखते हैं कि उसकी पुकार में कितनी सत्यनिष्ठा, कितना प्रेम है। प्रभु का रूप, उनकी महिमा, उनका माधुर्य भक्त के हृदय पर अंकित रहता है। भगवान तो भक्त वत्सल है, वे ही हम सबको संरक्षण प्रदान करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी प्रार्थना देवाधिदेव अवश्य स्वीकार करेंगे।
0: ऋषिवर, अज्ञानता में मनुष्य भगवान से कुछ भी मांग बैठता है, लेकिन अच्छा यही है कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उसके अनुग्रह की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि भक्त अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है तो फिर भगवान उसके योग क्षेम का भार स्वयं वहन करते हैं। प्रार्थना वो कुंजी है जो हमारे लिए अनेक द्वार खोल देती है। इसलिए ऋषिवर, आप शीघ्र से शीघ्र महादेव के समक्ष अपनी प्रार्थना रखें, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।
1: देवराज, मैं शीघ्र ही महादेव के समक्ष अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
2: और इस प्रकार ऋषि भारद्वाज कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कैलाश पर्वत पर वसंत के अवसर पर प्रतियोगात्मक नृत्य चल रहा था। भारद्वाज ऋषि वहां पहुंचकर एक तरफ जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। शीत एवं बर्फ से कठोर शारीरिक कष्ट सहते हुए भारद्वाज को 8 दिन व्यतीत हो गए।

तब देवी पार्वती ने शीत एवं बर्फ से कठोर शारीरिक कष्ट सहते हुए भारद्वाज ऋषि की तरफ एक दृष्टि डाली, एक जरासी मुस्कान के साथ ऋषि की तरफ देखा तथा पूर्वत नृत्य करने लगी।

0: ऋषि भारद्वाज ने उनकी मुस्कुराहट को गलत समझा कि यह मुस्कुराहट व्यंग्यात्मक थी, इसलिए वे कैलाश की ओर पीट कर क्रोध पूर्वक नीचे उतरने लगे और अचानक वे कष्ट से पीड़ित हो गए। उनके बाएं हाथ और पैर क्रियाहीन हो गए। भगवान शंकर ने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा
1: माम क्षमा माम रक्षा करो प्रभु देवादिदेव महादेव रक्षा करो।

0: ऋषिवर आप अन्यथा न लें। देवी ने आपके यज्ञ को अपनी मुस्कान के साथ वरदान दिया था, जिसे आपने गलत समझा।
1: हे नाथ, हे देव, हे कृपा सिंधु, मेरे अभिमान को नष्ट करिए, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखिए प्रभु।
0: ऋषिवर, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे शरणागत होता है, मैं उसके योगक्षेम का भार स्वयं वहन करता हूं। कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति को यथावत बनाए रखना भक्त की वास्तविक परीक्षा होती है। जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है, तो मैं उस भक्त का मार्गदर्शन और संरक्षण करता हूं। भक्ति मन की वह स्थिति है जिसमें भक्त की हर आती जाती सांस भगवान का गुणगान करती है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह निर्भय हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, क्रोध, अहंकार के दुर्गुण जो मनुष्य को सताते हैं, वे उसे शांत नहीं रहने देते। मानव का मूल स्वभाव सत चित आनंद की अनुभूति प्राप्त करना है। जो कुछ भी है सर्व ब्रह्ममय है। इस सत्य का साक्षात्कार करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आपकी कामना शुभ है। आप निर्भय होकर जाइए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं देवी पार्वती के संग आपके यज्ञ में अवश्य उपस्थित होऊंगा।
1: जो आज्ञा देवाधिदेव महादेव।
2: और इस प्रकार महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर ऋषि भारद्वाज अपने आश्रम लौट आते हैं तथा यज्ञ की पूर्ण तैयारी करके शंकर भगवान का स्मरण करते हैं और यज्ञ की प्रथम आहुति देने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उपस्थित होते हैं।

0: तथास्तु, हम आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको यह भी वरदान देते हैं कि कलयुग में हम तीन बार मानव रूप में, प्रथम मैं शिरडी साईं के रूप में, द्वितीय मैं और देवी पार्वती सत्य साईं के रूप में, और तृतीय शक्ति अवतार प्रेम साईं के रूप में भारद्वाज गोत्र में अवतरित होंगे। और साथ ही जैसा देवी पार्वती ने कैलाश में आपके प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया था, उसके फलस्वरूप सत्य साईं अवतार में 8 दिन तक शक्ति को भी उस पीड़ा को सहन करना पड़ेगा, फिर मैं उन्हें स्वस्थ कर दूंगा।
1: महादेव, मैं धन्य हो गया, मेरी साधना सफल हो गई।

और इस प्रकार त्रेता में भारद्वाज मुनि को दिए हुए वरदान के फल स्वरूप ईश्वर ने प्रथम शिरडी अवतार लिया और वर्तमान में सत्य साई बाबा ईश्वर की पूर्ण महिमा के साथ अवतरित हुए। आइए हम सब शिव शक्ति के इस महिमा का गुणगान करें और आनंद के अपार सागर में विलीन हो जाए।